एक्स का एफ एम कौवा ओल तन कुछ अंगवा प्रोग्राम को सऊजी से का के राधो के कवे तू का खई से पंगवा कोई खई कवा राधो के निमुरु या वनी तन से व पेन ने खा एफ एम मन तो कोई अंगवा ओल ना जिता अंगवे सा कवजी से का के राधो के कवे तू का खई से पंगवा तन कुछ अंगवा ओल ना जिता अंगवे सा कवजी के कौन का के प्रोग्राम को ना कि कभी आतू का कई से पंगो को सीन देगी मासी देगी कौन कहने को सुपा कि 7 डेढ़ तक मनी थे मॉन्ग का अंगवा ओलंग में तेरे हो जित्ता बा उनको ऐसा कभी से गंग कौन ताल के राधु कि कभी आतू का कई से पंगो बा कोई सीन देगी तेरे चोंग बा ओलंग जित्ता उनको ऐसा दें जीवन का कि रेस तक अगर ओला कौन है ता कोई सी देगी कौन कहने को सुपा कि 6 डेढ़ तक मनी थे कि ओलंग में कौन है तेरे कनु से मासी देगी का वह खसुन ओला तो मासी देगी कौन कहने को सुपा कि से जिन देर तक मनी ते मो तो अंग वाले न्यू हो चित्ता वा आकुआ दे का वा कन वुजे से वुसियों तके क्रेमे के सेफ्टी का वा चिंग वो तुले पंगा वो कुसियों तके अमने भूसा वा चिके मतलब चोंग वा वोला मची चा कोई सा कोई सी का कौन ताया के राधु कोई अलिकुआ पुखाम के मामा मसो तन भी तो उंगा वा ओलंग